जो जो पाथौ नेपाल सम्बन्ध पी खुद दिल्लागा सप्तमी थो रेडियो नेपाल ख आनेना दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश बहुप्रतीक्षित विकास आयोजना कृषि शिक्षा सड़क पूर्वाधार व जनजीवन नापा स्वपुदुगु विशेष योजना तेता आफ्ना झ्याकेको विशेष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह व सुदूरपश्चिम प्रतिनिधित्व यापी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया सांसद मिन्दथी मिग सिंह दरबारे सल ब्यागुदु सलस महाकाली कोरिडोर सेती लोकमार्ग शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय धनगढी खुटी आदि पाल फास्ट ट्र्याक ग्रामीण विद्युतीकरण खुसी नियन्त्रण व किसान त्यता लानासँग हाठ्याया विशेष जेङ्के त सांसद पिसा सरकारी अध्ययनको सल्लाह दिगु ख प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय सन्जुगु सल सम्प्रदेश अमुख विकास नापा तपेङ्क स्वपुतैको आयोजना तेस इलेहे पुङ्के त संघीय सरकार बालाक पलाछी मागुली सांसद तेसम बबिगु खसत होइ लस्ता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मुक सुदूरपश्चिममा फया चङ्गु हाठ्या ठट्यान हङ्केता अल्पकालीन व दीर्घकालीन कार्य योजना देके मागुली थप्न नवचन पोङ्के गु धया दिगु खस सल सम्पत्ति कापी डलेर धुला एक या प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तारा प्रसाद जोशी प्रधानमन्त्री नापाया सल सम्मुख सुदूरपश्चिम या विकास जनजीविका या पूर्वाधार तब्याकेको विशेष आफ्ना सल जुगु जानकारी व्यादिगु खस सल सम्पत्ति कापी सांसद त्यसमा कैलालिया गेटा दुगु सहित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय याकेगु प्रक्रिया थथे निज्याके मागु धनगढी खुटिया दिपाल फास्ट ट्र्याक देखेगु नीति याक्न या मागु कैलालियो कञ्चनपुर या तराई लाग्या उपया चङ्गु आथे तोता तपी चौपाया व्यवस्थापन या नीति दीर्घकालीन नीति देके माग विशेष बबिगु ख नारायणगढ मुलिन सडक खण्ड या सिमताल लिक मिग सुते चलाउना कुतौगु लोह फस याना लोह चायना निखे या लपु टिना सङ्गुदु जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन या प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल थापा थत्ते चल चिकेगु ज्यान ह्याना चोङ्गु जानकारी ब्यादिगु दुस थुकिया नीति डिभिजन सडक कार्यालय नापा समन्वय जुया चोङ्गुना जानकारी ब्यादिल नर्स अभियन्ता ज्योति राणा भाट सरकार नापाङछिङ गुगु धलया सहमति या थुङ्कानी थग आवरण अनसन त्वा थगुदु स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय ओ राणा भाट दती मिग जुगु सहमति लिपा साउन 14 गते निसे नेपाल नर्सिङ परिषद परिसरे हेनासङ्गु अनसन त्वा थगु ख प्रतिनिधि सभासँग वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी या मसिकायाना मनुतेगु संरचना पुनस्थापन या नीति सरकार माग व्यवस्था या माग विशेष सार्वजनिक महत्व प्रस्ताव दति सहलजुगुदु सार्वजनिक महत्व प्रस्ताव न्यवया दिशा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलीय नेता भीष्मराज आङदेम्बे सरकार सक्कली सुकुम्बासी भूमिहीन आत्मा हना नापा आवास क्या दे माग कनादिगु खसा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलीय नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रस्तावक यागु प्रस्ताव समर्थन या विशेष नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक एन बहादुर महर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल व श्रम संस्कृति पार्टी प्रमुख सचेतक आर्यन राई चुनादिगु खसा प्रस्ताव दतिया सलसन संसद सुकुम्बासी बस्ती डोजर चले यागु सरकार मया दैगु भलसा त्वा थगु धासे वास्तविक सुकुम्बासी मचिकायना सुरक्षित आवास क्षतिपूर्ति ओ लालपूर्जा इनेगु इने त माग्याना दिल सरकार झिङ्यान उपतिक प्रगति विवरण समिति सन्दुत बि मागु व इलेहे हाठ्या मन्या थुकेता नसकने दिशा सरकार झिङ्यान उपतिक प्रगति धल समिति सन्दुत बि मागु व हाठ्या मजेनी बुले तक्क लक्षी यङ्क सदन या त जानकारी याके माग प्रस्ताव नापाने थना दिगु दुसा बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम आदिवासी जनजाति आयोग खुक गु दक्षीय प्रतिवेदन आर्थिक द 2081/82 दुतबिया दिगु दु छुन ह्यालवापु व हाठ्याया हुने यो कोहे संवेदनशील जुया चोङ्गु सुनसरिया झोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका मिग सामाजिक सद्भाव कायम यानु धैगु नारा नापा सर्वपक्षीय शान्ति सद्भाव र्याली पिकागुदु आयागु झाँका लिपा स्थानीय प्रशासन थोलागा छाक सुरक्षा व्यवस्था छेला तगुदु हाठ्यान जागु थोलागा गोसागुगु र्याली समुदाय दतिया विश्वास छप छति जुइगु भलसा धार्मिक सहिष्णुता व सामाजिक सद्भाव या त अञ्चल सेलाकिगु हसना बिगुदु प्रतिनिधि सभा या उद्योग व वाणिज्य
व श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मेघे बैठक सांसदीय व आपूर्ति मन्त्रालय मातहत्या निकाय त नापा इनाफ यागुदु नसा जोरी आइगु ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन विशेष समिति समिग सहल याना दिसे संसदीय बजारे ग्यास अब आप मो जुगुली त थते हंकेता इनाफ याना दिगु ख समिति सभापति रहबर अनसारी ग्यास मो बार बार खने दया चुंगुली छे छेलाबुला जुइगु व होटेल छेलाबुला जुइगु औद्योगिक लागे छेलीगु ग्यास ब्याग्ल ब्याग्ल जुइमा आगु धया दिलसा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति गौरी कुमार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी ग्यास आपूर्ति सह मन्त्रालय सहजीकरण याना वया चुनागु थया दिल परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल सरकार आर्थिक समृद्धि कागु आज नापान योजना सुनागु धया दिगुदु परराष्ट्र मन्त्रालय मेघ आर्थिक कूटनीतिक महाशाखा यागु शासन जुगु जाजुयाता क खाना दिसे वेक्ला आर्थिक समृद्धि नीति अन्तर्राष्ट्रिय सहायता व्यापार महत्व जागुली दंसा जुगु धया दिल मन्त्री खनाल अन्तर्राष्ट्रिय सहायता व्यापार लागा नेपाया बोती व लभयाता अचतव्याके मागुली बव्या दिल संस्कृति पर्यटन व नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल एन देखिबले पर्यटन लागया सम्भावना यात्रा केन्द्र तया देखे मागुली बबिया दिगुदु प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यटन समिति मेघया बैठक पर्यटन विधेयक 2081 विशेष संजुगु सहलसम मन्त्री पौडेल पदमार्ग संरक्षण एन आरोग्य पर्यटन नापाया सम्भावित विषय यात्रा ध्यान तसे समझदारीसँग आधारित एन देखे मागु थौ यागु ज्याजुगु धया दिलस वैकल देन्यङ नेनाचोङगु सुध सिबे उप होटल अझन दर्ता मयासे चलियाना तगु खने दुगुली थुकिया दर्ता प्रक्रिया हेता युखे हाथ्या जुगु नापा समिति यता जानकारी ब्यादिगुदु सांसद सुनसरियो तराई मधेसे शान्ति पुलिस्ता या नीति सरकार दीर्घकालीन सोच ते मागु मनुते के दुगु ग्याचिकुची के त कुत या मागुली बब्यादिगुदु प्रतिनिधि सभा हिगै बैठक प्रतिपक्ष दल सांसद धनुषा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ याना दिगु झिन्सुङ्गु धल्या सहमति स छगु पक्ष नापा जक सहमति जुगु धासा लिचु थेङ्के मफैगु धया दिगु दुसा बैठक सांसद पिसा तराई मधेसे पेमा मनुत सिगुली झाँकाया निष्पक्ष छानबिन यायगु नीति छगु विश्वसनीय आयोग निशुनेता मागेना दिगुख बैठक सांसद भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी सुस्तालिक नेपाली भूमि दुहाउना नेपामी मनुतेता ख्याचो बिगु भौतिक संरचना नापा शङ्का बिगु विशेषण सरकारी अध्ययनको सागुदु जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी देवानगंज गाउँपालिका तीन कप्तानगंजे थोहे साउन 10 गते चाने जुगु झाका घापा जुमा निनित दुमा रविन्द्र मेहता वास्या झोले मधुगुलिता कया दुख पङ्कगुदु प्रशासन सार्वजनिक इनाफ यासे ये वासया नाचोमा मेहता सिगुलिता कया बिचाहाका दिसे शोकङ्कगु छेचे यता समवेदना पङ्कगुदु झाँकासँग लिचोलागु पक्ष यता लागु दुख व हाठे यता पूर्ण कथा क घ्यागु व सीमा छेज नापा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ याना दिगु सम्झौता कथन राहत व ग्वाली लल हेता राज्य प्रतिबद्ध जुयागु थया दिगुदु प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेपाल विशेष सेवा एन 2042 साविक व्यवस्था यागु विशेषण विधेयक 2083 पारित यागुदु समिति मिगचुङ्गु बैठक प्रतिपक्ष दल या संसदीय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यता प्रधानमन्त्री कार्यालय कथम मजुसे गृह मन्त्रालय कथम हेते मागु याना तगु संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार्य से बहुमत पारित यागुदु आदेशम्पिने आबुख अमेरिका व इरान दथिन्हेना चोङ्गु हाठ्या नङ्केगु नीति कूटनीतिक कुत प्याची लोपी हेज्याका चोङ्गु कतारा धागुदु कतारा परराष्ट्र मन्त्रालय कता सम्भावित सम्झौता मस्यौदा निकु पक्षदथि कालबिले जुया चोङ्गुदु अथे जुसाना आतको अमेरिका व इरान दथि तपेङ्क खलाबला धासा जुगु मधु कतारे अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दथि टेलिफोन खलाबला जुगु व अमेरिका मतभेद म यागु लम्फु विशेषण सल जुगु अमेरिका थागुदु श्रीलङ्का मडिक वोगु वाल
खुसी बा व चलङ मना मोटिन यामा मनो सिगु दुस निमा मनो तनासङ्गु दु विपत्या फुकन छिबे आप्ला हाट्या च्या उत्पादन नीति मसिका दुगु मध्ये पहाडी लागा लागु दु झाँका लिपाथो लागाया विद्यालय त बन्द जुया चङ्गु दुसा दोलन्दो मनोते त सुरक्षित थासी अङ्क गुदु सरकार विपद व्यवस्थापन केन्द्रीय गथले पाङ्गु निनु निसेन होया चङ्गु वा व डेया ठिठी लागा वना चङ्गु चल खुसी बा स यको सेङ्का चङ्गु धागु दुस मध्ये पहाडी लागा यको सडक तके लुह व चाकुतङ गु व बिजुली पोल पोल त नापा पोदया चोङ्गुली यातायात नापाली चोलाना चोङ्गु धागु दु थो विपद वङ्गु नोभेम्बरी वगु विनाशकारी चक्रवात डिट्वा लिपा वगु तधङ्गु प्राकृतिक प्रकोप खसा थो चक्रवाते अथे खुस पिमा मनुष्यगु दुसा निगु लाख शिवे मनु त निगु लाख शिवे उप मनु त लिचो लागु व अथे पेदो पेङ्गु अर्ब झिगु करोड अमेरिकी डलर बराबर क्षति जुगु सरकारी तथ्याङ्के नेथना तगुदु थो इले मध्ये प्रान्त फुक्कसिबे उप लिचोलाना चोङ्गु अनया सडक रेलमार्ग वा आवास नापा सेङ्गुदु पाकिस्तान खैबर पख्तुनख्वा प्रान्त या स्वा जिल्ला जुगु आत्मघाती बम विस्फोटने लाना नेमा प्रहरी सिगु दुसा झिनेमा मनु खापा जुगु नि नेमा मनु खापा जुगु दु पाकिस्तान खैबर पख्तुनख्वा प्रान्त या स्वा जिल्ला जुगु आत्मघाती बम विस्फोटने लाना नेमा प्रहरी नापा झिनेमा सिगु दुसा नि नेमा खापा जुगु दु पाकिस्तानी पत्रिका डन या कथन स्वात प्रहरी प्रवक्ता नासिर इकबाल करिमी लिकया काबुल चोके कानुन कानुनी व्यवस्था विरोध सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन जुया चङ्गु इले काबुल प्रहरी स्टेसन लिक आत्मघाती बन बम विस्फोट जुगु ख स्वात प्रहरी कथ प्रहरी कर्मचारी पिस प्रहरी स्टेसन या दुहामुनिगु लुखा उमिता दिकेत कुत या धुङ्का आक्रमणकारी पिन्स विस्फोटक या कगु डन धागु दु आतक थो आक्रमण या भाला दशा सुन अतिवादी समूह तेस कागु मधु मौसमी जानकारी थौ देया पहाडी लागाया यको थासे तराई लागाया छुन थासे मल नापा लाप्सा तोय पति चतस्कम वावीगु सम्भावना कुबीगु जुगु दुसा कोशी बागमती प्रदेश हिमालय पहाडी व गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी वा तराई लागा व कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी लागा छगुनीगु थासे तस्कम वावीगु सम्भावना कुबीगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु नि पे गौले ये सोनी गया क्वाज सुइगु फुटी सोङ्गु डिग्री सेल्सियस तति लुगु खसा थौ निने ये सोनी गया क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस तति चोने थौ निने ये सोनी गले थौ सुते ये सोनी गले सुते स्याङ्याता इजुया निनि गुमिनेटे लुया वगु सूर्य शनि ल खुता इजुया नि खुगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन शुभ है।

तनम साइकिल से धक्का मर लू दिल में घंटी बाजल आहा के चेहरा गोरी दिलबा में साजल साइकिल से धक्का मर लू दिल में घंटी बाजल आहा के चेहरा गोरी दिलबा में बासल।

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

रेडियो नेपाल बर्दिवास ठीक विजय झा से सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। सरकार सुनसरी आ सिरहा में गोली लाग के मृत्यु भेल परिवार के राहत तथा क्षतिपूर्ति देवाक निर्णय कलक। आई बैसल मंत्री परिषद बैठक से सुनसरी घटना में प्रदर्शन के क्रम में मृत्यु भेल आ घायल की क्षतिपूर्ति राहत आ उपचारक व्यवस्था करवाक निर्णय कने शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल बतौलन। घटना में सुनसरी में 3, सिरहा में 1 4 गोटा के मृत्यु भेल। सरकार लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद में यांगी उक्याव के नियुक्त करबाक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के खाली रहल अध्यक्ष पद में प्राध्यापक डॉक्टर खड़क बहादुर केसी के नियुक्त करबाक आ सचिव पद में प्राध्यापक डॉक्टर रोजी श्रेष्ठ के नियुक्त करबाक निर्णय कने प्रवक्ता पोखरिल जानकारी दिलन। अहिना बैठक से तथ्यांक पहल संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत करबाक, बाल बालिका संबंधी पहल संशोधन विधेयक 2081 संघीय संसद समक्ष पेश करबाक, पशु वधशाला आ मांस जांच ऐन 2055 चरणबद्ध रूप में नेपाल राज्य भर लागू करबाक निर्णय कलक। नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समिति गठनादेश 2054 खारिज करबाक, नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समिति के नेपाल परिवहन तथा गोदाम व्यवस्था कंपनी लिमिटेड संग जोड़ के स्वीकृति देवाक निर्णय कने आजुक मंत्री परिषद के बैठक कलक। प्रतिनिधि सभा के कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति अंतर्राष्ट्रीय संस्था सब सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब के राजनीतिक दबाव से त्यागपत्र देवा लेल बाध्य कने संयुक्त विज्ञप्ति के स्पष्टीकरण मांग करवाक लेल सरकार के निर्देशन दिलक। समिति के आजुक सिंहदरबार में बैसल बैठक से महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुरिस्ट आ ह्यूमन राइट्स वाच जारी कने संयुक्त विज्ञप्ति संबंधी आधिकारिक विवरण उपलब्ध कराक संबंधित संस्था संग स्पष्टीकरण मांग निर्देशन दिलक। नेपाल के संविधान आ कानून व्यवस्था हिसाबे संसद तथा सरकार के संवैधानिक अधिकार से ऊपर रह के कोनो अंतर्राष्ट्रीय संस्था राजनीतिक वा नीतिगत प्रभाव पारे वाला प्रयास नहीं करबाक चाहे कहित समिति के सभापति समीक्षा बास्कोटा ए निकाय संग स्पष्टीकरण मांग लेल मंत्रालय के निर्देशन देने बतौलन। अना स्वीकृत परियोजना समझौता हिसाबे गैर सरकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था स्वीकृत उद्देश्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कने नहीं कने नियमन अनुगमन करबाक व्यवस्था प्रभावकारी बनाबे से हो समिति निर्देशन दिलक। समिति में भेल विचार विमर्श में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुभिता गौतम, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब सपना प्रधानमल, कुमार रेग्मी आ हरिप्रसाद फुयाल के त्यागपत्र देवा लेल बाध्य कयल गेल दावी गलत रहल स्पष्ट करैत एहन आरोप पुष्टि होवय वाला तथ्य आ प्रमाण प्रस्तुत भ क सरकार कानून बमोजिम आवश्यक कार्रवाई आगू बढ़ावा प्रतिबद्ध रहल बतौलन। बैठक में सांसद सब न्यायपालिका के कार्यपालिका के छाया के रूप में परिणत करबाक नहीं चाही तथा संचार माध्यम से लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में संवेदनशील आ प्रमाणक आधारित भ क सूचना प्रवाह करबाक चाही बतौलन। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय नेपाल के कृषि क्षेत्र के आधुनिक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनेबाक लक्ष्य के संग राष्ट्रीय कृषि नीति 2083 जारी कलक। संघीय शासन प्रणाली हिसाबे तैयार कयल गेल ई नीति खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता, कृषक के आय अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्धन के मुख्य प्राथमिकता में रखलक। अय नीति के संबंध में अपन धारणा रखत कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी, कृषि क्षेत्र के विद्यमान चुनौती के समाधान करें टिकाऊ उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली निर्माण करवाक उद्देश्य से नीति आनल गेल बतौने छलथि। नीति भूमि खंडीकरण, बांझ जमीन के वृद्धि, सिंचाई तथा भंडारण पूर्वाधार के अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व तथा बढ़ रहल आयात निर्भर जेहन समस्या के समाधानक लेल स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था कलक। नीति कार्यान्वयन के लेल संघ प्रदेश आ स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्र के सहभागिता तथा नियमित अनुगमन आ मूल्यांकन के व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय जनौलक। मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि नीति 2083 के प्रभावकारी कार्यान्वयन से खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात अभिवृद्धि तथा समृद्धि राष्ट्रीय अर्थतंत्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचाक अपेक्षा कयलक। सरकार विदेश से नेपाल आवय वाला नेपाली के अपरिचित व्यक्ति, दलाल व अन्य व्यक्ति के प्रलोभन में नहीं पड़
सोना, बहुमूल्य धातु तथा अन्य सामान नेपाल नै आन लेल विशेष आग्रह कयलक अछि। नेपाल प्रहरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय विशेष अनुरोध जारी करैत बीतल किछु दिनभर दुबई, कतार लगायत देशमे काज कऽ कऽ स्वदेश घुरयवला किछु नेपालीके अपरिचित व्यक्ति दलाल तथा अन्य आर्थिक प्रलोभनमे पाइक सोनाके बिस्कुट, बहुमूल्य धातु तथा अन्य सामान नेपाल पठबैत आयल बताएल गेल अछि। एहि कार्यालय एहन कार्य कानून विपरीत हेबाक तथा एहि सम्बन्धमे विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय अनुसन्धान तथा कानूनी कार्रवाई कऽ रहल जनबैत अवैध लऽ जा आ लाबक काजमे संलग्न भेलके कार्रवाई हेबाक चेतावनी देलक अछि। कार्यालय अपरिचित व्यक्ति दलाल वा अन्य ककरो प्रलोभनमे पड़ि कऽ सोना, बहुमूल्य धातु वा अन्य सामान नेपाल नहि आनब, अपन सामान तथा झोरामे भेल सामानके वास्तविक विवरणके जानकारी राखब, खरीद बिल तथा आवश्यक कागजात सुरक्षित राखब, भन्सार सम्बन्धी प्रचलित कानूनके पालना करबाक लेल तथा दलालके प्रलोभनसँ दूर रह लेल आग्रह कयलक अछि। सङ्गे विमानस्थलमे कोनो शङ्कास्पद गतिविधि वा प्रलोभन सङ्ग सम्बन्धित सुरक्षा जोखिम देखल गेलापर तत्काल सुरक्षा निकायके जानकारी करेबाक लेल कार्यालय अनुरोध सेहो कयलक अछि। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बजारमे खाना बनाबयवला एलपीजी ग्यासके आपूर्ति किछु दिन भित्रे सहज हैत से जनौलक अछि। मन्त्रालय उपभोक्ताके अपवाह वा भ्रमपूर्ण सूचनाके पाछू नहि लागि आवश्यकता हिसाबे मात्र ग्यास खरीद करबाक लेल तथा अनावश्यक संचय नहि करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। मन्त्रालयके प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदी द्वारा मंगल दिन जारी विज्ञप्तिमे अगिला वर्षके इएह अवधिके तुलनामे अखन नियमित माग चलाइब सकयवला परिणामसँ अधिक एलपीजी ग्यास आयात आ वितरण भऽ रहल उल्लेख कयल गेल अछि। एहिना वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बजार अनुगमनके तीव्र बनौलक अछि। नेपाल आयल निगम आ ग्यास उद्योगी सङ्घके समन्वयमे ग्यासके आयात, भण्डारणकरण आ वितरणके पारदर्शी तथा अनुमान योग्य बनेबाक सुधारके काज सेहो शुरू कयल गेल मन्त्रालय जनौलक अछि। मन्त्रालय वैकल्पिक सिलिंडर नहि भेल सर्वसाधारणके उपभोक्ताके पहिचान कऽ प्राथमिकताक आधार पर गैस उपलब्ध करेबाक लेल आग्रह कयलक अछि। एहिना कऽ कृत्रिम अभाव सृजना केनिहार, कालाबाजारी केनिहार, कानून विपरीत कार्य केनिहार आ उपभोक्ताके अनावश्यक दुःख देबयवला व्यक्ति वा संस्था पर प्रचलित कानून बमोजिम कड़ा कार्रवाई कयल जेबाक मन्त्रालय चेतावनी देलक अछि। गत बैसाख 1 गतेसँ अखाढ़ मसान्त धरि देशभरि सञ्चालन रहल विशेष अभियानमे अवैध हाथ हथियार सम्बन्धी मुद्दामे संलग्न 84 गोटेके पकड़ाउ कयल गेल अछि। केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षके हिसाबे काठमाण्डू उपत्यका 7, कोशी प्रदेशसँ 14, मध्य प्रदेशसँ 11, बागमती प्रदेशसँ 5, गण्डकी प्रदेशसँ 18, लुम्बिनी प्रदेशसँ 13, कर्णाली प्रदेशसँ 10 आ सुदूर पश्चिम प्रदेशसँ 5 गोटे पकड़ायल अछि। हुनका सबके सङ्गसँ चाइनिज पिस्तौल 2टा, पिस्तौल 2टा, रिवॉल्वर 1टा, कटुआ पिस्तौल 9टा, भरुआ बन्दूक 41टा, बन्दूक 9टा, एयर गन 3टा बरामद कयल गेल अछि। एहिनाके चाइनिज पिस्तौलके 4 राउंड, SLRके 263 राउंड, कटुआ पिस्तौलके 14 राउंड तथा विभिन्न प्रकारके बन्दूकमे उपयोग होवयवला 70 राउंड गोली सेहो बरामद कयल गेल अछि। सड़क विभाग बाढ़ आ भूस्खलनसँ 3टा पूर्ण आ 6टा सड़क खण्ड आंशिक रूपसँ अवरुद्ध भेल जनौलक अछि। विभागके हिसाबे बाढ़ आ भूस्खलनसँ ओ सड़कसभ अवरुद्ध भेल अछि। भूस्खलनके कारण अवरुद्ध 24टा सड़क खण्ड सामान्य सुधारके बाद सञ्चालनमे आयल अछि। नेपाल प्रहरीके हिसाबे भूस्खलन नदी कटान, थाल आ सड़क धसलासँ राजमार्गसँ प्रभावित भेल अछि। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत धुलीखेल सिन्धुली क्षेत्रमे बाढ़िके जोखिमके कारण साँझ 6 बजेसँ भोर 4 बजे धरि सवारी साधन सञ्चालनमे रोक लगाएल गेल अछि। एहिना मकवानपुरके कान्ति लोकपथमे सेहो वर्षाके कारण साँझ 5 बजेसँ भोर 5 बजे धरि सब प्रकारक सवारी साधन सञ्चालनमे रोक लगाएल गेल प्रहरी जनौलक अछि। इलाम नगरपालिका वार्ड नंबर 9 राजदुआली स्थित मेची राजमार्ग सेहो वर्षाके कारण सड़क थालमे भेलाके कारण पूर्ण रूपसँ अवरुद्ध भेल अछि। ओहि क्षेत्रमे वैकल्पिक मार्गके व्यवस्था कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। सिद्धुपालचोक स्थित अर्निको राजमार्ग तऽ विभिन्न 3 स्थानमे भूस्खलन आ सड़क धसलासँ पूर्ण रूपमे बन्द रहल अछि। एहिना दोलखाक लम्बा साँगु रामेछाप सड़क तमाकोशी गाँवपालिका 5 किरणेटारमे तमाकोशी द्वारा सड़क कटान कयलासँ पूर्ण रूपमे बन्द भेल अछि। मुदा खिमती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाक परिसरसँ वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमे आनल गेल अछि। नेपाल प्रहरी वर्षाके कारण सड़कके अवस्था परिवर्तन भऽ रहलासँ यात्रा करयसँ पहिने सम्बन्धित निकायसँ सड़कके अवस्थाबारे जानकारी लेबाक लेल तथा आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल सर्वसाधारणके आग्रह कयने अछि। आब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी 2027 आयोजना होवला एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटके मिति
सार्वजनिक कैलक अछि। क्रिकेट समाचार प्रकाशन करवाला वेबसाइट क्रिक इन्फो के हिसाबे आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट सन 2027 के अक्टूबर 4 सँ नवंबर 21 तारीख धरि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे आ नामीबिया में होयत। अहिना विश्वकप में छनोट खेल 2027 के फरवरी 22 सँ लऽ कऽ मार्च 23 तारीख धरि सम्पन्न करबाक अछि। आईसीसी विश्वकप छनोट के प्रक्रिया में परिवर्तन सेहो कयलक अछि। छनोट में 10 टोली भाग लेत। छनोट खेल जीता वाला टोली सीधे 14 टोली सहभागी हो वाला मुख्य छनोट में हो पहुंचत। दोसर सा चौथा में रह वाला टोली सुपर सीरीज के पहल चरण खेल के प्रावधान रखल गए। यह चरण के शीर्ष टोली मुख्य विश्वकप के अंतिम 12 टोली के समूह में पड़त। अहिना छनोट प्रतियोगिता खेल वाला 10 टोली से वरीयता के आधार पर आईसीसी के एक दिवसीय वरीयता में रहल दू पूर्ण सदस्य दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे बाहक आईसीसी लीग दू से चुनाल 4 टोली आ प्ले ऑफ से आवे वाला 4 टोली विश्वकप में अपन स्थान बनाओत। नेपाल दू लीग दू के शीर्ष स्थान में रह कर विश्वकप पहुँच के योजना समाप्त भ चुकल है। अब नेपाल लीग दू के प्ले ऑफ के बाट पकड़े के अवस्था में है। अखन लीग दू में सहभागी 8 टोली मध्य नेपाल 32 खेल में 24 अंक जोड़े तालिका के छठम स्थान में है। आईसीसी प्ले ऑफ के ढांचा अखनो तैयार नहीं कने है। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका, ईरान, ओमान बीच हरमुच जलघाटी में समुद्री आवागमन पुनः व्यवस्थित करवाक अंतरिम समझौता अंतिम चरण में पहुंचल। गत महीना अमेरिका ईरान बीच भेल 14 बूंदी समझदारी पत्र विफल भेलाक बाद बढ़ल तनाव कम करत युद्ध विराम पुनः स्थापना आ आणविक वार्ता पूरा शुरू करवाक उद्देश्य के संग अमेरिका आज समझौता के घोषणा करवाक तैयारी कने एक्सियोस दू क्षेत्रीय स्रोत आ एक अमेरिकी अधिकारी के उद्धृत करत जनौलक। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवा से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुनसरी और सिरहा में गोली लगने से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को राहत उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय। कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति 2083 जारी। कृषि क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। एलपीजी की आपूर्ति सहज बनाने और कृत्रिम कमी पर नियंत्रण के लिए संसदीय समिति का निर्देश। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले में 21 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सुनसरी और सिरहा में गोली लगने से मारे गए लोगों के परिजनों को राहत और मुआवजा देने का निर्णय किया है। मंत्री परिषद की आज की बैठक ने सुनसरी की घटना में प्रदर्शन के दौरान मारे गए और घायल लोगों को मुआवजा, राहत तथा उपचार उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। इस घटनाओं में सुनसरी में 3 और सिरहा में 1 व्यक्ति सहित कुल 4 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने निवेश बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पद पर यांकी उकिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर डॉ. खड़क बहादुर केसी तथा सदस्य सचिव पद पर प्रोफेसर डॉ. रोजी श्रेष्ठ की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। बैठक में तथ्यांक प्रथम संशोधन नियमावली 2081 को मंजूरी देने, बाल बालिका संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2081 को संघीय संसद में पेश करने तथा पशु वधशाला एवं मांस निरीक्षण आयन 2055 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय किया गया। इसके अलावा बैठक ने नेपाल इंटर मॉडल यातायात विकास समिति गठन आदेश 2054 को निरस्त कर समिति का नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कंपनी लिमिटेड में विलय करने की स्वीकृति भी दी है। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि नीति 2083 जारी की है। संघीय शासन व्यवस्था के अनुरूप तैयार की गई इस नीति में खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता, किसानों की आय में वृद्धि, किसान उत्पादन बढ़ाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा कि ये नीति कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करते हुए टिकाऊ और उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। नीति में भूमि के अत्यधिक विखंडन, बंजर भूमि में वृद्धि, सिंचाई एवं भंडारण पूर्वाधार की कमी, युवाओं का पलायन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कम उत्पादकता तथा बढ़ती आयात निर्भरता जैसी समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संघ, प्रदेश और स्थानीय तहों के बीच समन्वय, आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थापन, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने नागरिकों की शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सीधे सुनने के लिए हम सुनेंगे अभियान शुरू करने का निर्णय किया है। पार्टी के सह महामंत्री हरि ढकाल ने बताया कि केंद्रीय समिति के निर्णय के अनुसार ये अभियान श्रावण 25 से पार्टी के केंद्रीय कार्यालय घंटी घर में शुरू होगा। अभियान के तहत नागरिकों की शिकायतें और सुझाव सुनने तथा समाधान में सहयोग के लिए प्रतिदिन 2 केंद्रीय सदस्यों और 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। प्रतिनिधि सभा की कार्य व्यवस्था परामर्श समिति की बैठक में संसद के आगामी कैलेंडर और सदन की कार्यवाही को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित तथा परिणाममुखी बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में सांसदों के आचरण, ड्रेस कोड, कार्यसूची प्रबंधन और संसदीय गतिविधियों को अधिक नियमित एवं प्रभावी बनाने के सुझाव दिए गए। सभी राजनीतिक दलों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय बढ़ाकर संसद की गरिमा और जन उत्तरदायित्व को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 22 गते दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की संघीयता सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति ने सरकार को देश भर में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कृत्रिम अभाव तथा कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश किया है। समिति ने उपभोक्ता वस्तुओं की लैब जांच की व्यवस्था करने और उपभोक्ता अदालत को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। सांसदों ने गैस संकट के शीघ्र समाधान, बाजार निगरानी को प्रभावी बनाने तथा महंगाई और कालाबाजारी पर नियंत्रण की मांग की। उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाड़ी ने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। नेपाल ऑयल निगम के कार्यकारी निदेशक दीपक बराल ने कहा कि कुछ दिनों में गैस आपूर्ति की स्थिति सामान्य हो जाएगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। युवा श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा कि सरकार एक वर्ष के भीतर देश में 1,00,000 रोजगार सृजित करने की तैयारी कर रही है। प्रतिनिधि सभा की उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की बैठक में उन्होंने बताया कि फ्री वीजा, फ्री टिकट व्यवस्था प्रभावी और पारदर्शी नहीं रही है, इसलिए इसे समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वैदेशिक रोजगार आयन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में सांसदों ने विदेश जाने वाले नेपाली श्रमिकों पर पड़ने वाले आवश्यक अनावश्यक खर्च को कम करने, घरेलू कामगारों को G2G व्यवस्था के तहत भेजने तथा वैदेशिक रोजगार में ठगी के शिकार लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने कहा कि नेपाल के आंतरिक संवैधानिक और न्यायिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तथ्यहीन टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संगठनों के उस संयुक्त बयान पर आपत्ति जताई जिसमें सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों पर राजनीतिक दबाव डालकर इस्तीफा दिलाए जाने का आरोप लगाया गया था और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। संसदीय समिति ने सरकार को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश किया। साथ ही गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं और कार्यक्रमों के नियमित एवं प्रभावी अनुगमन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय नागरिकों की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हेलो सरकार को उन्नत कर नागरिक शिकायत एवं एकीकृत सेवा प्रबंधन प्रणाली के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। हेलो सरकार शाखा के उपसचिव कृष्ण साप कोटा ने बताया कि इसके लिए विस्तृत अवधारणा पत्र और कार्ययोजना का मसौदा तैयार कर चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक संबंधी कार्यालय में सीधे हेलो सरकार प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज कर उसकी कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यदि वे सीधे शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते तो हेलो सरकार की स्वचालित प्रणाली शिकायत को संबंधित निकाय तक पहुंचाएगी। बांके के नेपालगंज स्थित भैयापुर की एक ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। जिला पुलिस कार्यालय बांके के अनुसार सोमवार को दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय राम फेरन कोयरी की आज उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इससे पहले हादसे में 52 वर्षीय बरसादी लोध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। मिथिलांचल सहित तराई मधेश के जिलों में विवाहित महिलाओं द्वारा 13 दिनों तक मनाया जाने वाला मधुश्रावणी पर्व शुरू होने के साथ ही गांव सांस्कृतिक गीतों से गूंज उठे हैं। सावन माह की पंचमी तिथि से शुरू होने वाले इस पर्व में नवविवाहित महिलाएं प्रतिदिन शाम को पति की दीर्घायु की कामना करते हुए लाल हरी और पीली साड़ी, आभूषण चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनकर समूह में पारंपरिक गीत गाती हैं। इसे 13 दिनों तक मिथिला के गांवों में विशेष उत्साह और रौनक बनी रहती है। मधेश प्रदेश के धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सरलाही, रौतहट, बारा और परसा जिलों में ये पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। चूंकि ये पर्व हर वर्ष सावन महीने में मनाया जाता है इसलिए इसे मधुमास भी कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है और 130 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने राजधानी पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागी। कई आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान कई घंटों तक चलता रहा। मृतकों में बच्चे भी शामिल है। सबसे अधिक नुकसान कीव के एक जिले में हुआ, जहां एक बहुमंजिला आवासीय भवन का बड़ा हिस्सा ढह गया। राहत कर्मियों ने मलबे से जीवित लोगों को निकालने के लिए रात भर अभियान चलाया। शहर के कई हिस्सों में आग लगने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की खबर है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने हमले में बड़ी संख्या में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का उपयोग किया। वायु रक्षा प्रणाली के ने कई लक्ष्यों को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें और ड्रोन आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुनसरी और सिरहा में गोली लगने से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को राहत उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय। कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति 2083 जारी। कृषि क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। एलपीजी की आपूर्ति सहज बनाने और कृत्रिम कमी पर नियंत्रण के लिए संसदीय समिति का निर्देश। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले में 21 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: झण्डो आयुर्वेद।
5: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डो नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक पुतली सडक काठमाडौँ।
4: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
5: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
4: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
5: झण्डु नेपाल प्राली पुतली सडक काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
6: 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
7: कुनै पनि कारणले उत्पन्न हुने हिंसात्मक घटनाले जनधनको क्षति मात्र होइन, समाजमा वर्षौंदेखि कायम रहेको विश्वास, भाइचारा र सद्भावमा समेत गहिरो चोट पुर्याउँछ। संयमता, धैर्यता र जिम्मेवार नागरिकको व्यवहार नै सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
8: अशान्ति फैलाउने प्रयास प्राय अफवाह, भ्रामक सूचना र उत्तेजक अभिव्यक्तिबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि समाचार, फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्दैमा त्यसलाई सत्य ठान्नु हुँदैन। आधिकारिक निकाय वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट पुष्टि नगरी कुनै पनि सामग्री सेयर नगर्नुहोस्। जात, धर्म, भाषा र समुदायका नाममा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र उत्तेजक टिप्पणीबाट टाढा रहनुहोस्। याद राखौँ, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एउटा गैर जिम्मेवार पोस्टले समाजमा ठूलो तनाव सिर्जना गर्न सक्छ भने एउटा जिम्मेवार व्यवहारले शान्ति कायम राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
7: कुनै विवाद वा समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकाय, स्थानीय प्रशासन वा समुदायका अगुवासँग समन्वय गरी शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान खोजौँ।
8: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको अनुरोध।
9: आदरणीय श्रोता, तपाईँ रेडियो नेपालको प्रसारण सुनिरहनु भएको छ। यो एउटा सूचना यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। पश्चिम नवलपरासी दाउन्ने 103 मेगाहर्जमा केही दिनदेखि प्रसारणमा अवरुद्ध भएको कारणले आजबाट निर्माण सम्पन्न भई सुचारू रूपमा सञ्चालन भएको बेहोरा यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। अबको प्रस्तुतिमा सङ्गीत साधना कार्यक्रमको पुनः प्रसारण प्रस्तुत गर्दैछौँ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला।